0: लिल बंटी, तुम्हारे अब्बू आ गए फिर।
1: पापा पापा आप फिर आ गए।
0: मुबारक हो मिली ये मौत, तू तो सिली है बहुत, अब पुसी तू गिली है बहुत। बंटी को लगी है भूख, नाश्ते में मिली थी हार, अब मिलेगा डिनर में एल, इसके मुंह से

0: अब आपके बारे में बोलेगा, इसे लग रहा ये मार नहीं खाएगा। एड्रेस है तेरा मेरे पास, अगर मैं आऊंगा भाग नहीं पाएगा। एक और बार बोल उनके बारे, मामला रैप के बाहर ही जाएगा। बंटी तो पूरा है पुसी, पेपर भी दोगे ये फाड़ नहीं पाएगा।
1: और मेरा गाना प्रमोट करने के लिए थैंक यू बिच।